नमस्कार एडलेड, मैं हूँ आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता और आप सुन रहे हैं 5 VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडलेड। आज की शाम समर्पित है एक ऐसी आवाज जिसमें सादगी भी है, मिठास है, रोमांस है और हमेशा जवान रहने वाली मुस्कान है। आज हम मना रहे हैं उदित नारायण जी स्पेशल यादों की बारात में। उनके सुनेंगे ढेर सारे गाने और उन पर करेंगे ढेर सारी बातें और शुरुआत उस गाने से हो जो हर ग्रेजुएट, हर सपना देखने वाला बेटा और हर प्राउड फादर की कहानी को बयां करता है। चलिए पापा कहते हैं सुनेंगे फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत ओनली ऑन 5 VBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: क्या बात है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सिर्फ एक गाना ही नहीं बल्कि हर बच्चे के सपनों और हर माता पिता की उम्मीदों की आवाज है। उदित नारायण की आवाज में एक खास खुशी है। जब वो रोमांटिक गाना गाते हैं तो लगता है जैसे हवा भी प्यार का पैगाम लेकर चल रही है। अब जो गाना आ रहा है उसमें प्यार भी है, दीवानगी भी है और एक खूबसूरत सा सस्पेंस भी है। फिल्म डर से जादू तेरी नजर। आइए सुनते हैं 5VBI पर यादों की बारात में आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।
1: किरण, I love you. I love you, किरण।
2: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

चलिए दोस्तों, आप सुन रहे 5VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड, और यादों की बारात में हम उदित नारायण स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं। और जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, जो गीत अभी भी आपने सुना उसके बारे में मैं क्या कहूँ। कुछ गाने बस सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग अभी भी आपने सुना, और उदित नारायण की जो आवाज़ 90s के बॉलीवुड रोमांस को एक अलग ही पहचान दे देती है। उनकी आवाज में शरारत हो तो हीरो दिल जीत लेता है, दर्द हो तो सुनने वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी नोकझोंक का वक्त है। शाहरुख खान का चार्मिंग अंदाज और उदित नारायण की एनर्जेटिक आवाज, अगर जादू होना है तो ये गीत तो बनता है। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस मूवी से ये गीत को लिया है, रुक जा ओ दिल दीवाने। चलिए, मस्ती भरी ये परफॉर्मेंस सुनने के साथ साथ हम आंखें बंद करके देख भी लेंगे। ओनली ऑन 5VBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032201. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: Seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
2: For setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co., a sponsor of this program.
3: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659, or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
4: A proud sponsor of 103.15 EBIFM.
5: चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को इस समय बहुत सारे लिसनर्स वेबसाइट के थ्रू सुन रहे हैं, केवल एडलेड से नहीं बल्कि न्यूजीलैंड और इंडिया से भी. इस समय जय शिव चरण इस प्रोग्राम को इंडिया कोल्हापुर से एंजॉय कर रहे हैं अपने फार्म में बैठ करके. पूरा परिवार इस प्रोग्राम को रेगुलरली सुनता है और आरजे निकिता का आप सभी को ढेर सारा प्यार. तो चलिए अब बारी है उदित नारायण जी की अगले गाने की. तो कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मुलाकात पूरी कहानी बदल देती है. घर से निकलते वक्त हमें पता नहीं होता कि रास्ते में कौन मिल जाए और कौन हमेशा के लिए दिल में बस जाए. अगला गाना इसी मासूम एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करता है. घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही, आइए पापा कहते हैं इस फिल्म का ये गीत आपके हवाले जरूर करेंगे. सुनेंगे ओनली ऑन 5 EBI पर.

कितना प्यारा और मासूम गाना। इसे सुनकर पहला क्रश, पहला प्यार, कॉलेज के वो दिन, वो खास इंसान की पहली झलक जरूर याद आई होगी। आज की छोटी सी सारी अर्ज है, कुछ आवाजें वक्त के साथ खो जाती है, कुछ दिल में अपना घर बना जाती है। उदित जी की आवाज भी कुछ ऐसी है जो हर पुराने यादों को फिर से जगा जाती है। अब एक ऐसा गाना जो अपने जीवन साथी के लिए दिल से निकलते हुए सीधा आपकी ओर आ रहा है, आइए सुनते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में, राजा हिंदुस्तानी मूवी का ये गीत सुनेंगे 5 VBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

सच में कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और जीने का मतलब ही बदल देते हैं। उदित जी की आवाज की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि उनकी सिंगिंग सीधे दिल तक पहुंचती है। उनके गानों में ना सिर्फ सुर और ताल है बल्कि कहानी और जज्बात भी मिल जाते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है यादों की बारात में आप सभी को अलविदा कहने का। आज का सफर उदित नारायण जी की सदाबहार आवाज, खूबसूरत गानों और पुरानी यादों के नाम रहा। उम्मीद है इन गीतों ने आपको किसी अपने की खूबसूरत याद दिलाई होगी। मैं हूँ आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता, आप सुन रहे हैं 5 BPI 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहे और संगीत से जुड़े रहे। फिर मुलाकात होगी यादों की बारात में एक और सिंगर या फिर एक्टर के नाम। सो चलिए आखिरी गीत सुनेंगे। मैं यहाँ हूँ वीर जारा मूवी से इस गीत को लिया है।